हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर मटियारी तारी की आवाज
1: GFM 9 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर।
4: नेट काम जो चवणा है तैयार आपने हरमूर्स मां गुजरंदड़ टिन कमर्शियल जहाजन के निशानो बनायो जहिं जे जवाब में ईरान ते हमला कया वया। ईरान जो चवणा है त समुंडी इलाके में कश ऐं बंदरगाह अब्बास में धमाकन जाया आहिनि।

अमेरिका ॿीहर ईरान ते तेल विकिरो करण ते पाबंदी लॻाए छॾी। परॾेही मीडिया जो चवण आहे त अबना एरमूड ने कमर्शियल जहाज़नि खे निशानो बणाइण जो इल्ज़ाम मड़ींदे अमेरिका ईरान ते तेल विकिरो करण ते पाबंदी लॻाए छॾी। मुफ़ाहिमती यादाश्त नामे बाबति बाद अमेरिका 21 अगस्त 2026 ताईं ईरान खे तेल विकिरो करण जी इजाज़त डि॒नी हुई। ईरान पाबंदीअ खे मुफ़ाहिमती जी बनकड़ी करार ॾींदे चयो आहे त पंहिंजनि मुफ़ावतनि ऐं क़ौमी सलामती जे तहफ़ लाइ अमेरिकी क़दम जो मुनासिब जवाब। बस ऑपरेशन इराक घरू वज़ीर हमले जी मज़हरदारी चयो त बलूचिस्तान में अमन जी हर साज़िश खे नाकाम बणायो वेंदो। शहबाज शरीफ चयो त कंहिंखे बि बलूचिस्तान जे अमन खे नुक़सान पहुचाइण न ॾींदासीं। मोहसिन नकवी चयो त दहशतगर्दाना हमला अमन खे ख़राब नथा करे सघनि। बिलावल भुटो ज़रदारी पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन ते भेटा पेश। ज़रदारी चयो त भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दीअ खे नाकाम बणायो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां मुल्क मां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे वारे अज़म जो वर्जाओ। काबीना इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाक फ़ौज मुल्क मां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ ॾींहुं राति कम करे रही आहे। मुल्क मां दहशतगर्दीअ जे मुकमिल ख़ात्मे वारे ॾींहुं घणो परे नाहे। वज़ीर आज़म काबीना खे ईरान ऐं तुर्किया जे दौरनि बाबति में एतमाद में वरितो। शहबाज शरीफ चयो त तुर्क सदर ऐं सीड़पकारनि सां मुस्बत मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। तुर्क सीड़पकारनि पाकिस्तान में सीड़पकारीअ में दिलचस्पी ॾेखारी आहे। डोनाल्ड ट्रंप तुर्की ते लॻल पाबंदियूं बि ख़तम करण जो ऐलान करे छॾियो। तुर्किया पहुचण ते सदर रजब तैयब अर्दगान पारां सदर ट्रंप जी आजियां तोपनि जी सलामी बि ॾिनी वई। गार्ड ऑफ ऑनर बि पेश। ट्रंप जे नेटो ते सख़्त तनक़ीद। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त नेटो ईरान ख़िलाफ़ जंग में असांजी मदद न कई। नेटो इजलास में अचण जो मूड न हो। तुर्किया जी मेज़बानी सबबि हिते आयो आहियां। ॿियनि मुल्कनि जी भेट में तुर्किया अमेरिका सां वधीक वफ़ादार रहियो। अमेरिका सदाई यूरोप खे रूस खां बचायो आहे।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
3: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे अस्करी बैंक।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
5: अंग्रेज फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद अबिन एयरक्राफ्ट इंजीनियर समेत अमले जा पंज मानू सवार हुआ। गुम थियल जहाज जी गोला लाए समुंड में सर्च ऑपरेशन जारी है। अमन मुआहदे बावजूद अमरीका जा ईरान ते बीहर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड हमल की तस्दीक कर छी। अमरीकी सेंटकॉम चवण है ईरान अपने हुरमत में गुजरद टे कमर्शियल जहाजन के निशानो बनाया जिन जवाब में ईरान ते हमला क्या व्या। ईरान जो चवण है समूरी इलाके सिर कशम बंदरगाह पास में धमाकन जवाज बुधा व्या।

अमरीका बीहर ईरान के तेल विक्रो करण से पाबंदी लगाए छी पर डीमीटर चवणा है अपने यादाश्त नामे बाद अमरीका 21 अगस्त 2026 तक ईरान के तेल विक्रो करण की इजाजत डिनी हुई। ईरान पाबंदी के मफामती यादाश्त नामे डींदे है कौमी सलामती के तहफुज ला अमरीका कदम तो। सिक्योरिटी फोर्स जो क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हिंदुस्तानी फितने जा 15 दहशतगर्द जानम भीड़ा सदर वजीर आजम वफाकी कर वजीर पारा पुलिस चौकी दहशतगर्दन के हमले की मज़म सदर आसिफ जरदारी बलोचिस्तान में अमन खराब करण की हर साजिश के नाकाम बढ़ाए वो शहबाज शरीफ कंखे भी बलोचिस्तान के अमन के नुकसान पहुंचाने न डींदी। मोहसिन नकवी दहशतगर्दन जा बुजलाना हमला अमन के खराब न था कर सकन। बिलावल भुट्टो जरदारी पारा दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब ऑपरेशन से भेटा पेश बिलावल भुट्टो जरदारी भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के नाकाम बढ़ाए वो वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे बारे आजम जो बचाव काबिना

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GA FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: अभिजी सिंध जो आवाज़
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसई नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो
2: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले।

0: AM is brought to you by
1: Peach Cream.
2: अब बनाने वालों की फखरियां पेश कर
3: कीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
3: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
3: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
3: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्टों के खिंचाव, मोच,

0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो इंटरनेशनल।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: 2024 जे तकरारी रिजन खिलाफ़ वधीक टेवीह उमेदवारनि पारां दाखिल कयल दरख़्वास्त खे ॿुधणी अदालत धुरिन खां 5 अगस्त ताईं जवाब तलब करे वरितो। दरख़्वास्त गुज़ारनि पारां सदन बस चा में ॿीहर चेक कराइण जी सदा। ऐं छठे वे जो पीर तिरकण साहिब के डी वाह में नौजवान ॿुॾी पियो। गजी वाह गोड़ अली मोहम्मद कातियार वटि नौजवान के डी वाह में ॿुॾी पियो। गोलाचारी आहे।
1: आप सुन रहे हैं न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आए, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: क्या आप जोड़ों के खिंचाव, कमर दर्द से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बना फकीरी एनल जैसे क्रीम
3: अज्जा से तैयार कर
4: असर क्रीम मुतासर कर
3: दर्द से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी
3: के बाद होने वाले
4: कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतर
4: सिर्फ मुतासिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी क्रीम को अपने
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम दर्द रम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: सुन रहे हैं

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की।

0: सच जो आवाज 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो बुधंदा रहो।
1: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap. Jildi infection se bachao ka behtareen zariya hai.
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Juriyo, chayo, keel mahaso aur garmi dano se hifazat ke liye.
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap. Garmiyon mein de thandak ka behtareen ehsaas. Har roz kudrati nikhar.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: भारतीय ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार के साथ वाइट एज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6।
1: मैसेज कर सकते हैं, सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, इसको सेंड कीजिए 888-1 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है या जो कि आप लोग सर्च कर सकते हैं GFM 88 के नाम से। उस पेज में मिलने वाली पोस्ट आपको नजर आएगी जिंदगी गुलजार है की, जिसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर 03000113488, जिसके ऊपर कॉल करेंगे, ठीक है। और सुर लगाओ, गाना सुनाओ, जिसमें हम आपसे सुनेंगे एक अदद गाना और वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा। सो हियर कम्स द फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो। हेलो हेलो हेलो, ओके जी, आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? थोड़ा सा लाउडली बात करें भाई।
2: क्या हाल है भाई?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रोग्राम सुनते हैं, एंजॉय करते हैं?
2: हाँ जी बिल्कुल सुनते हैं, रोजाना
1: रोजाना सुनते हैं। ओके, मुझे ये बताइएगा कि या गाना कौन सा सुनाएंगे?
2: गाना अभी आपको बता रहा हूँ, एक राजा उर्फ का है।
1: किसका?
2: राजा उर्फ।
1: ठीक है, सुना दें।
2: जिस दिल पे लिखा था नाम तेरा, मैंने तोड़ दिया। दिल पे लिखा था नाम तेरा, कोई दिल मैंने तोड़ दिया। होने दिया बदनाम तुझे, तेरा नाम ही लेना तोड़ दिया। होने दिया बदनाम तुझे, तेरा नाम ही लेना तोड़ दिया।
1: ओके, वेरी नाइस। और मुझे बताइएगा कि और कुछ कहेंगे?
2: अल्लाह आपको खुश रखे, हमारे लिए दुआ दिया करो, हमारी बहन हो।
1: फर्स्ट थैंक यू 03000 लेने जा रहे हैं। ओके, हेलो हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम। अजी आप कुर्बान अली कासकेली को बनाए गोरखा जी, गुलाम कासकेली।
1: कुर्बान भाई कैसे? ठीक ठाक।
3: दुआ लगी भैया ना बेनर गाउन का खुश है और सर बहन
1: जी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?

0: बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्राम अधी बुधू पे डाटो मदो दे दियो ताकि जो आवाज भलो है मजी
1: अरे सुना दे कौन सा गाना सुनेंगे
0: आज आ ये कलाम बुधाएंगे अन्ना ने जुड़े जाइयो
1: ओके सुना दे
0: ओ सोहनी तो रतवारा ओ प्यारा पंजी सोहले का पतारा
1: ओके जी ये का गाना है सुनो टू
0: तो आदि पर मरी खालक ला जरवार पे जे
1: थैंक यू डबल फोर डबल में आपने कहा उसकी ला

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हम नवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: आपकी एनर्जी थी कॉल मिलाने में। अगर उसी एनर्जी से मिलाएंगे तो जैसे पहले आपकी रोज लगती थी वैसे भी लगेगी।
4: नो एनर्जी रोज एकदम एडजस्ट नहीं होगी ना। गर्मी है ना, गर्मी एनर्जी इधर उधर हो जाती है।
3: चलें चलें, गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखें और गाना सुने, एंजॉय करें। ठीक है
4: ठीक है मैम।
3: ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये रहा गाना।

0: Okay, ji, one more next caller. Hello.
1: Hello.
0: Hello. कौन बात कर रही है?
1: सितारों से नहीं मोहब्बत एक सी होती है, हजारों से नहीं. अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल?
1: अल्लाह पाक का करम है दादी. आप सुनाए कैसे? ठीक ठाक है
0: जी. मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताइएगा के प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी जी, आपका मैं प्रोग्राम सुनता हूँ शौक से.
0: शौक से सुनते हैं. कैसा
1: आपका नाम? जो आपका नाम जो रखा है ना, एफ एम की रानी. मैं वही बात कर रहा हूँ नरकना से.
0: ओके जी, एफ एम की रानी. वाओ, अच्छा नाम. मुझे बताए गाना कौन सा सुना रहे हैं?
1: मैं आपको सुनाऊंगा. पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझने आए मैं क्या करूं.
0: मैं नहीं प्ले कर सकती, मैं क्या करूं. बॉलीवुड कंटेंट है. अच्छा, नेक्स्ट कॉल है. हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. दुआ कवल कैसे हो?
2: ठीक हूँ.
0: मैं बहुत अच्छी हूँ. गाना है कोई अच्छा सा?
2: हाँ है.
0: सुना दे फिर.
2: हम तो होश के, हम तो कुछ ना कहे, होश वालों होश उड़ गए. ये आगे नहीं आता. मुझे सहायता होता है.
0: आप कितने
2: हंसी,
0: आप
2: खुद भी नहीं जानते.
0: नहीं जानते ऐसे.
2: हाँ,
0: ये वाला प्ले करें.
2: हाँ ये करो.
0: ओके, कर दिया. और कुछ?
2: हाँ अच्छा, कभी सिंधी में बात करो ना. आपकी सिंधी रिकॉर्ड
0: सिंधी में बात करूँ?
2: नहीं, रिकॉर्ड भी करना चाहती हूँ.
0: सिंधी हिंदी ना है मुखे. सिंधी अच्छी नथी की गलायूं. सही है.
2: मैंने बेटा से सिंधी
0: जी.
2: बेटा से सिंधी
0: इतनी
2: बेटा से सिंधी गलाय.
0: ओके ओके. बियो कुछ?
2: हाँ बियो कुछ. बस हमारी यार कॉल लगी था.
0: हेलो, ठीक है. पहन जो ख्याल रखो.
2: ओके अल्लाह हाफिज.
0: ओके अल्लाह हाफिज. इससे ज्यादा नहीं आती.

0: अपना शहर अपना घर मठिया और मठियारी की
1: स्क्रेस पीएम दिस ट्रांजेक्ट इज ब्रॉट टू यू बाय
2: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पीटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी सुनते रहो जीए 1.6।
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्टों के खिंचाव, मोच,
2: पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 90, सिंध जो आवाज, सिंध जो आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: और पूरी दुनिया के अंदर, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही इस मौजू के हवाले से देख रहा था, चाइना के अंदर उन्होंने 66 बिलियन दरख्त लगाए हैं और वो बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम हर काम में तो बहुत डिले शुरू करते हैं और फिर तवज्जो भी नहीं होती, और हर शोबे के अंदर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कमी कोताहियां हैं, और जो हमारे काम करने वाले लोग हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ तमाम शोबा जाती के अंदर, फॉरेस्ट को भी मैं काउंट करूंगा, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ और पूरा इसका पूरा एक डिपार्टमेंट है, इसका डीजी भी है, इसका पूरा एक निजाम है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमारे यहाँ उतना फाल नहीं है जितना मुल्कों के अंदर काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें ये परेशानी आती है। थोड़े दिनों में आपको सुनने को आएगा जी सैलाब आ गए, थोड़े दिनों में आपको पता चलेगा जी कहीं पे पानी की सतह जो है वो इतनी कम हो गई कि बोरिंगे सूख गई। तो इन सारी चीजों का, ये कुदरती तमाम मामलात का जो एक साइकिल है, ये दरख्तों से, प्लांटेशन से आके कहीं ना कहीं जुड़ता है, जंगलात का एक सिलसिला है। आप नॉर्दर्न एरियाज में जाइए, आपको वहां पे एटमोसफेयर भी डिफरेंट मिलेगा, आलूदगी भी कुछ कम मिलेगी, तो एयर क्वालिटी का भी बहुत बड़ा इशू जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स के थ्रू है, तो इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें सरकारी सतह के ऊपर जो हमारे जिम्मेदारान हैं उनको उस वक्त से पहले कि जब कोई ऐसी इमरजेंसी अराइज हो उससे पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर ट्री प्लांटेशन की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि गर्मी के मौसम में ऐसे कौन से दरख्त हैं जो लगाना ज्यादा मौजू है।
0: देखिए, इस सिलसिले में दरख्त जो भी हैं वो एक दिन में नहीं लगते, उनको 2-5 साल लग जाते हैं इस नहज तक पहुंचने में कि जी वो आपको साया प्रोवाइड करें। सब्जियां 3-4 महीने में उग जाती हैं, उनको हम कंज्यूम भी कर लेते हैं। जहां तक दरख्तों की बात है, नीम का दरख्त है और सायेदार दरख्त हैं। अब हमारे यहाँ कराची में जामन है और दूसरे ऐसे दरख्त हैं कि जो नेचर से हेल्पफुल हैं और जो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इस तरीके से पुराने जमाने में बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे, बरगद के दरख्त हुआ करते थे। अगर आपको और जो हमारे सुनने वाले हैं उनको बिल्कुल, जिनका एमएजना रोड आना जाना है, बंदर रोड आना जाना है, मैं गुज़िश्ता दिनों बंदर रोड गया, वहां पे डेवलपमेंट की वजह से उन्होंने वो तमाम पुराने दरख्त जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान बनने के वक्त से लगे हुए थे, वहां पे अब इक्का दुक्का के अलावा कोई नजर नहीं आता, जबकि वो हमारा नेशनल एसेट्स थे, और उनको रिलोकेट करने के बजाय उनको काट दिया गया, उनको हटा दिया गया, और एक एक दरख्त 40-40, 50-60, 70-80 साल उनकी उम्रें जो हैं, उनकी फिर वही ऑक्सीजन देने की सलाहियत भी उसी हवाले से होती है, साया देना। अब हम बाइक की पार्किंग, गाड़ी की पार्किंग के लिए साया ढूंढ रहे होते हैं, हमें कहीं साया मैसर नहीं आता, और हमने इतने पुराने दरख्त काट दिए। इसी तरीके से जो भी, और दुनिया के अंदर जिनकी ट्रैवलिंग है वो भी इस बात को देखेंगे कि दुनिया के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे बनते हैं तो वो इतने पुराने दरख्तों को, जो कि हमारा असासा है, उनको रिलोकेट किया जाता है, उनको इस तरीके से लकड़ी का अंबार समझ के काट नहीं दिया जाता, जलाने के काम में नहीं लिया जाता उनको। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि इस पे हमें भरपूर तरीके से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना चाहिए, और जो बचे कुछ ऐसे दरख्त हैं जो मेरे ख्याल में मेरी और आपकी उम्र से भी पुराने हैं, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, वो हमारा असासा है।
1: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, 2 मिनट है हमारे पास, तो लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जितने भी लोग जो है इस वक्त हमें सुन रहे हैं, और गर्मी शदीद हो रही है पाकिस्तान में, हीट वेव्स जो है वो पड़ रही हैं, तो आप हमें बताइए कि आप लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर देना चाहेंगे हीट वेव से रिलेटेड।
0: देखें, हीट वेव्स की एहतियाती तदाबीर यही है कि ऐसे वक्त जब धूप बहुत ज्यादा हो तो उस वक्त जरा सा गुरेज करें, खास तौर से बच्चे, खवातीन और हमारे बुजुर्ग हजरात जो हैं, और घर से बाहर निकलें तो अपने आप को ढक के निकलें, पानी का इस्तेमाल अच्छा खासा करें, ओआरएस का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि हीट के वक्त, जिस वक्त हीट वेव की आपका, जिसे कहा जाए कि हीट वेव के नोटिसेस हों कि भाई हीट वेव है, उस वक्त थोड़ा सा एहतियात करें, अपना भी एहतियात करें, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने बड़ों का, सबका जो है वो ध्यान करें, تاکہ

छा तवां जो ख्वाब आए तो मुस्तकबिल में एक कामयाब डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी बन जो छा तवां मयारी तिबी तालीम सा पैंजे कैरियर के नई ऊंचाइयां ताई पहुंचाण चाहियो था तो पई खुशखबरी आहे अवां जे लाए हाणे सखर में सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्टों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
3: हम आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आप लोगों के रिसीव होते जा रहे हैं, जो कि हम इंक्लूड करते जाएंगे। सो जी, कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ चलेंगे हम, जो कि इतनी है। हमें कमेंट किया है अदील खान ने, कहते हैं आपका शो बड़ा सुपर डुपर है। और आशिक खास के लिए हमें सुन रहे हैं, हाफिज यूनुस बाबर हमें सुन रहे हैं। और गाना हमारा क्यों खत्म हो गया है मुझे नहीं पता है।

ओके, इसके साथ साथ कमेंट्स की तरफ आते हैं और भी बहुत सारे कमेंट आप लोगों के और मैसेजेस भी. हमें मैसेज कर दिया है जी, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम बाजी. शहर गुलाब लगा रही नजगोट. भाष्यम बाशाम खान रिंद से, शायर गाजी खान रिंद, रिजवान अली रिंद, फैजान अली रिंद, और कहते हैं कि शहजाद अली रिंद, छोटी कौनैन जेरा बाजी आपका शो सुन रहे हैं. बहुत अच्छा है आपका बोलने का अंदाज. थैंक यू भाई और बहुत शुक्रिया आपका. और ऐसे ही सुनते रहें, इंजॉय करते रहें और अपनी खूबसूरती को मजीद और खूबसूरत करते रहें, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे जब आप मेरा शो सुन रहे होते हैं. तो अच्छा हाँ, तालुका सेंडरी से हैदर बख्शर भी हमें सुन रहे हैं. रुखसार कैसी है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे. मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह पाक आपको भी बहुत खुश रखे. लेकिन वो अलग गाना ये रहा जो कि हम प्ले करेंगे, सुनेंगे, आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: हक संगीत जो आवाज जीटीआरई एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: जिंदगी दमाद सा कुरान के सजो प्रोनो सुबह 9:05 मिनट ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते।

0: हैप्पी एंटरटेनमेंट पर।
1: हक संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी सिंध जो आवाज उधर
2: वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार आपको और मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मैसेजेस और कमेंट्स और कॉल्स के थ्रू, वैसे कॉलर लेंगे 03000113488 के, और नेक्स्ट कॉलर हम लेंगे लेकिन इस गाने के साथ।

0: कराची शहर नहीं, एक जज्बा है। जब कराची का एक जायका नहीं तो एक बिरयानी काफी कैसे
1: बाफ चयो आहे समझण घुर्जे त धमकी नए इस्तेहसाल वारो दौर हाणे खत्म थी चुको आहे।
2: कराची ईंदे गुम थियल निजी ऐं बहिरी सर्च ऑपरेशन जारी वारो ऑपरेशन पाक पेरिया जब बहरी जहाज एक एआरटी जहाज बगोला पेरिया जो जदीद जहाज बगोला में मसरूफ मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ए मर्चेंट वेसल बुम थियल जहाज की गोला में रुधल कार्गो जहाज से कराची का 155 नाटकिल मेल के फासिले राबतो काटा थी पो हो। कार्गो जहाज में अमले जा 5 जणा सवार हुआ। गुम थियल जहाज के मावन पायलट फैसल महमूद जतोई जो तालुक नवा जतोई के भरवारे गोठ ठोड़ा शरीफ से है।
1: ईरान के शहीद सुप्रीम

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

उनका टॉपिक होने वाला है ना, तो वो सबसे पहले बता देते हैं। ओके जी, तो आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछना है वो थोड़ा सा ऐसा सवाल है कि उसके बारे में जो है ना, ये चीज मेरे जहन में आ गई थी कि मैं जरा आप लोगों से पूछूं कि इस मामले में देखा जाए तो आप लोगों का जहन क्या बोलेगा, आप लोग जो है वो इस टॉपिक के ऊपर क्या कहने वाले हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से कुछ इस तरह है, अल्लाह करी माजे को ना तवा की वो सवाल समझाए सका। ओके जी, तो ऐसा सवाल जरा यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप जरा मुझे बताइए, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारी नजर में हमें बड़े अच्छे लगते हैं। जब हम वो काम कर रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये जेको कम असा कयूं था, सफा परफेक्ट कयूं था, सफा भलो कयूं था। अगर उहो ई सेम कम को अगलो माण्हू बियो कंदो आहे ऐं असांजे ज़िंदगीअ में उहो माण्हू शामिल आहे, असां ॾिसूं था त बाबा ही माण्हू जेको आहे न उहो ई कम करे थो जेके असां पंहिंजे पास्ट लाइफ में करे आया, उन टाइम असांखे सही पिया लॻनि, साफ़ सुथरा पिया लॻनि, पर हिन टाइम ते हू माण्हू असांखे ग़लति पियो लॻे, ईअं छो? ये क्या इस चीज के पीछे लॉजिक है कि जो काम हमने कुछ टाइम पहले किया था वो हमें अच्छा सही सही साफ साफ लग रहा था, लेकिन अब के टाइम में अगला इंसान वही काम कर रहा है तो वो हमें गलत क्यों लग रहा है, वो तमाम चीजें हमें गलत क्यों लगती हैं, बताएं जल्दी से मुझे, मैं जानना चाहूंगी इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या कहना होगा। और अगर देखा जाए तो मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या कहते हैं इस टॉपिक के ऊपर। और उसके अलावा जो है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगलस पास दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे 8881 के अलावा फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। और पेज पर आइए और वहां पर आकर जो है ना आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो के लाइव पोस्ट मिल जाते हैं, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। ओके जी, तो अच्छे बच्चे बनकर हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। शेयर जरूर किया करें क्योंकि शेयरिंग दिल वाला रिएक्ट दे दिया करें। कंजूसियां यहाँ पर अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये सारे काम जो है ना मुफ्तम हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इनके बारे में जानना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे तो यकीन जाने कि आप लोगों का दिल लेना वो गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा जाए कि हमारे लिए जो है ना वो कोई भी कंपनी ऐसे नहीं सोचती कि भाई हर तरह का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, या अगर आप ये प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो ये तमाम प्रोडक्ट्स एक ही जो है ना वो प्रोडक्ट्स के अंदर आपके लिए अवेलेबल हो जाए। तो हर तरह से जो है ना आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखा गया है, हर तरह से आप लोगों की खूबसूरती को मेन व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स है एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल करने वाले हैं 03-15-799-0595 3015-79-5595। ही असांजो नंबर आहे जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से पंहिंजे ॻोठनि में पंहिंजे शहरनि में व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि तव्हां अवेलेबल कराए सघो था। ओके जी, सो टॉपिक मां अॼु अव्हां खां इहो पुछो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो पिया त असां जेको कमु कंदा आहियूं हिकिड़ो कमु, यानी कि इंसान पाण खे त जेको आहे न बहितर सम्झंदो आहे त मां असां जेको कुझु कयूं था सफ़ा सही कयूं था, असां जेको कुझु कयो मतिलबु थोरो टाइम पहिरियां, अॼु जी लाइफ में अगरि को ॿियो माण्हू उहो सेम कमु करे थो त उहो असांजे नज़र में ग़लति छो हूंदो आहे, इहो तव्हां अॼु बसि मूंखे ॿुधायो सवली सिंधी में। उन खां अलावा जेको तव्हांजा मैसेजिस आहिनि ऐं तव्हां पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा हलो। फ़हीम शेख हमारे साथ मौजूद आहे, वालेकुम अस्सलाम, इन मोला अलसलाम अदद। अदील खान, वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम मोरो। बेना, मुझे तरफ खां अवां खे मंझंदि जो सलाम क़बूल हुजे, अल्लाह पाक अवां खे हमेशा सलामत रखे, थैंक यू। चाचा खाली जुड़े जो आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है, आपकी आप बताएं आप कैसे हैं। और कहते हैं गर्मी की यहाँ लाड़काना में, कराची में तो थधकार आ, गर्मी इतने ठीक ठाक आ बस। और चाचा खालिद कहते ए मौत से बे शहर नहीं तुझसे शिकायत कोई, हम खुद ही दिलो जान की तबाही का सबब है, वाह वाह। फहीम कहते हैं छा हाल अहवाल आहे, सफा चा को आयो, अॼु गानो ॿुधाइजो, तव्हांखे अॼु हू वारो गानो ॿुधाईंदासीं, लॻे थो त बंगाली जादू आहे उहो वारो, ठीकु आहे। इमरान अली अब्बासी मेरे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम।
इमरान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है। वासफ भाई आ चुके हैं, हेलो वासफ भाई। और दर्दे दिल आ चुकी हैं, वालेकुम अस्सलाम। चंदा जानी आप कैसी हैं? वेलकम टू शो। माशाल्लाह माशाल्लाह आ गई प्यारी आरजे, बिल्कुल आ गई है। आपको भी खुशामदीद। और मोहम्मद मीरन जिखरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आबाद से, खुशामदीद भाईजान। और जी शू आ चुके हैं, जी शू वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद आपको भी, भली करी आया। और दर्दे दिल क्या कहती है, दुआ लफ्ज़ नहीं, दुआ जज्बात का समंदर है।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जब हो जाए स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर अपना घर मठियारी, और मठियारी की आवाज़
3: GFM 91.6।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91।
3: उन्हें बताइएगा कि हम स्कैम नहीं होने आए हैं जनाब, हमें पता है कि आपके पास अगर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं है तो हम व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके यहाँ अवेलेबल कराएंगे और उसके लिए आपके पास नंबर है जो कि आप डायल करना चाहते हैं तो जरूर डायल कीजिएगा, कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिए, उन्हें बताइए कि फलां जगह पर हम गए थे फला दुकान 1579905 बुढ़ी 315 95 595 ही नंबर अव जैसे तुम राबो करे पांच करीबी जनरल स्टोर से व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल कराए सको था। तो हाँ गाल स्टार्ट थी तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तुम इस्तेमाल करें चाहो था तक खबर ना तो छो इस्तेमाल करना तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर तुम्हें थोड़ा बुधाई हलां तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जी खूबसूरती के मुताबिक तैयार थियल है और आपको ये लगता है ना कि भाई केमिकल वाली प्रोडक्ट्स हम नहीं लगा पाती, हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है ये ब्ला ब्ला, तो आप लोगों के पास व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मौजूद है जो कि आप लोगों की सेंसिटिव स्किन के मुताबिक भी है और ये फुल नेचुरल अज़ा से तैयार की गई है। इसके अंदर एवोकाडो आपको मिलेगा, मिल्क है, एलोवेरा है, वो तमाम चीजें हैं जो कि आप लोगों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम एक जदीद स्किन केयर प्रोडक्ट है जो आपकी जल्द को ताजा, नरम और खूबसूरत बनाने में मदद देता है। इसमें शामिल है जनाब बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप लोगों की खूबसूरती को जो है ना वो उजागर करेंगी, खूबसूरती को बढ़ाएंगी और आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करेगी। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं, आप खवातीन हैं, हर कोई आप जो है ना वो बेफिक्र होकर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप टीनेजर्स हैं, आपके चेहरे की स्किन जो है वो काफी डल

हो चुकी है, आप चाहते हैं हमारे पास कोई अच्छी सी नाइट क्रीम हो लेकिन कोई बताता नहीं है, तो मैं हूँ बता दूंगी कि भाई आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम एक बहुत ही बेस्ट वाला ऑप्शन आपके पास होने वाला है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और साथ में आप इस्तेमाल कीजिएगा व्हाइट एज ब्यूटी सोप या फिर आप व्हाइट एज का फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाइट एज फेस वॉश की अगर मैं आप लोगों को थोड़ी बात बताऊं तो व्हाइट एज का जो फेस वॉश है ना ये विटामिन सी के साथ तैयार किया गया है, तो क्या की स्किन को जो है ना वो ब्राइट बनाता है एंटी एजिंग के ये भी है और बहुत ही मस्त है जनाब क्रीमी फेस वॉश है और इसके अंदर विटामिन ई भी मौजूद है। तो इतने सारे विटामिन्स के साथ साथ आप लोगों को ये जब प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करने तो बनते ही हैं और उसके साथ साथ अगर आप एक्ने की वजह से शदीद वाला परेशान है तो एक्ने को खत्म करने के लिए आपके पास डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब मौजूद है। डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है जिसके अंदर जड़ी बूटियां एड की गई है, कोई भी केमिकल नहीं है, आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव ऑयली ड्राई नॉर्मल कॉम्बिनेशन किसी भी तरह की तो आप लगा सकते हैं और उसके अलावा ना सिर्फ आपके चेहरे के एक्ने को खत्म करेंगे बल्कि आपके चेहरे पर जो निशानात होते हैं, जो कट होगा आपके चेहरे पर कभी लग गया ऐसा कट जो कि नहीं खत्म हो रहा या फिर आपके चेहरे पर कोई जलने का निशान है, वो सब निशानात या फिर एक्ने आप खत्म करना चाहते हैं तो आपके लिए डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब अवेलेबल है। ये आप नाम लेकर तलब कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा और ये छोटू सा ट्यूब है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके अलावा जो है ना इस्तेमाल करने के तरीकेकार यही है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे सोने से पहले, अपना फेस वॉश अच्छे से कीजिएगा, चंगे तरीके से पांजे मुंह के धो बाबा, पांच हथन के भी चंगे तरीके से वॉश करो, ना जिते जिते तवा के दाना आए, जिते जिते निशान आए, जिते जिते एक्ने आ, कुछ भी आप कड़ो भी प्रॉब्लम आ उन्हें चीजन ते लगाए करे ता समय पो ता सुबह जो पांजो फेस वॉश कंदा तो तमाजे एक्ने में फर्क हुंदो, तमाजे निशानात में फर्क हुंदो आई तमाजे जेके प्रॉब्लम्स आ वो सब दूर थी ना विंदा। आई व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम भी तमा ई लगाईंदा रात जो तमा सुमण खा पेरी लगाईंदा पांजो फेस वॉश कंदा आई पो लगाए करे सुमी पंदा। उनका अलावा व्हाइट एज लवली क्रीम जे बारे में अगर मा तमा के बुधाया तो मतलब मुखा पर्सनली कोई पुछे तो तमा जो व्हाइट एज में केड़ो प्रोडक्ट जेको आ फेवरेट आ तमा अखियो बंद करे बुधाईना व्हाइट एज लवली क्रीम। व्हाइट एज लवली क्रीम सबब आसा जो बटरी है दिल्ली में एडो जबरदस्त प्रोडक्ट है, मतलब मुझे एक ख्वाहिश जाती ख्वाहिश मतलब हटके ही स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नबी हो जाए तो मुझे दुकान एक ख्वाहिश है जाती तो व्हाइट एज लवली क्रीम जका ही ता सबनी के एक मरतबा लाजमी लगायन घुर्ज। आई व्हाइट एज लवली क्रीम जो अगर मां जो खास गालियों गणन ते विहारियां तो तवाजो तवा सोचिंदा तो बाबा एकड़े प्रोडक्ट के अंदर एतरी सब चीजों कैसे थी सकन थी, तो बिल्कुल आयन जनाब छो तो व्हाइट एज लवली क्रीम रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन जो फार्मूलो जिनके अंदर टीह वाइटामिन जो कैप्सूल आए हर तरह जो तमाम इनके अंदर वाइटामिन मिली वो तमाम स्किन के जै भी वाइटामिन की कमी होंगी वह पूरी थी वी। इन अलावा इनके अंदर सनस्क्रीन भी एड आए, सनस्क्रीन गोल्हण ही तमाम स्किन से उनको मैच थियण एडो वो जो मुश्किल कम लगन छो तो मुखल ताई एडी सारी थी वही हिमल ताई पांच टाइप की सनस्क्रीन न मिली है, सो अगर तवे प्रोडक्ट के अंदर ही तवाज हिसाब वाली सनस्क्रीन एड थियल है तवाज प्रोडक्ट एडो मस्त ठहल है तो तवे एक दफो इस्तेमाल कर घुर्जे। आई व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर कोई भी एज लिमिट कोने को बिल्कुल जी कोई एज लिमिट ना है, यानी कि इनके बार भी लगाए सकन था, तां टीनेजर्स आए हो, तां एजड आए हो, कुराड़ा मायूं जवान मर्द हर कोई लगाए सके थो। सो व्हाइट एज लवली क्रीम तवाजे घर में तो हुजन जरूरी है बाबा, तवा काड़ी वनो था पार्टी आहे को शादी आहे कुछ भी आहे तवाजे घर में इवेंट तवा कम कयो था को जॉब कयो था तो उन सूरत हाल में भी तवाजे हथ में जो है व्हाइट एज लवली क्रीम जो हुजन लाजमी है, छो तो जदी तवा व्हाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमाल कंदा बस तवा पांजो फेस वॉश कंदा व्हाइट एज लवली क्रीम अप्लाई कंदा पांजे ता बस ता रेडी आयो बस मुख्य कारी वी वनो ते दिल में फीलिंग इंदी। सो बिल्कुल व्हाइट एज लवली क्रीम के इस्तेमाल कर सको था, लगान जो तरीको यो है ता अगर तुम सुबह जो लगो था तेरा लाजमी कजो तमाम प्रोडक्ट्स आज जो तवे हर स्किन के मुताबिक तैयार थियल है, सो तुम लाजमी ट्राई करो तवी खूबसूरती वी तवे उ हुसन मिल जो तुम हमेशा हासिल करण चाहो पाया तमाल 3315।

जमा का सवाल पुछो है तो मतलब सवाल थोड़ा तां समझो असा पारे जिंदगी में खोड़ एड़ा कम कंदा आयो याने कि पास लाइफ में अगते हली करे जको ना मतलब असा पिया वे कम कया है ठीक है आई अगते हली करे ओ वे कम जके सेम असा पानी जिंदगी में कया से अगर ओही कम को बयो मानो करे तो असा जे सामो असा के ओही उन सा कम गलत लगन था ई छो असा कया से तो ठीक हुआ ओ करे तो गलत आ ई छो आमो के यू बतायो व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा।

स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है YGH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और आप इस्तेमाल कौन सा प्रोडक्ट करें मुझे बताइए जल्दी से। और हमारे साथ हेलो सिद्रा कैसी हो, मैं अहमद मुस्तफा फ्रॉम मोरो। कोई शादी वाला सॉन्ग प्ले कीजिएगा, ठीक है, ये गाना आपके नाम करती हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और हमारे साथ जी इरम कहती है प्यारी दिलबर दोस्त प्लीज फिल्म मुमताज मुलाई तू पान मासुपारी, ओके लगाते हैं आपके लिए। प्रिंस अहमद अली रंद हमारे साथ फ्रॉम अहमदाबाद, वालेकुम अस्सलाम पाक आर्मी, स्वीट शो प्लीज दीवा सहर का कोई भी गाना अपने पसंद का मैं लगाती हूँ जी। और मीरपुर खास अब्दुल्ला महर हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, YGH ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, क्या बात है। और हमारे साथ हैं जी कश्यप, कहती हैं सलाम आप कैसी हैं, गुड आफ्टरनून आप ही, कल आप नहीं वो ऐसी बात है कि जो मेरा 5 बजे वाला प्रोग्राम है ना वो सिर्फ लाड़काना में चलता है। अगर आप सुनना चाहती हैं तो आप मुझे फेसबुक पर सुन सकती हैं, ठीक है। बाकी जो गाना आपने बोला है वो कल वाले प्रोग्राम में आपके लिए लगाया तो था, आपने नहीं सुना होगा। अच्छा चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया चाचा, वेलकम करते हैं ये मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा मुस्कान, केड़ा हाल तवाजा खुश आयो अदी, अवां जो आवाजी अंदाज मुखे डाढो पसंद आहे, शो के सामान जो शो बुधंदो आया अदी 4-5 दिन खां, अच्छा चलिए हमारा प्रोग्राम नहीं सुन पा रहे थे। और कहते हैं कि मुझे भेण सॉन्ग जरूर प्ले कर जो, सजादुल्ला जमाली, अली हैदर जमाली, अली गुल जमाली, विलेजर रईस, मोहम्मद हसन जमाली, शफीबाद नवाब शाह प्लीज प्ले दिलशेर तेवड़ो, गुल जेड़ा सुठा माणो, चले भा मां कोशिश कदम तांजो गानो बुधंदासी, रसूलाबाद से अब्दुल सिंह शंबानी भाई, वालेकुम अस्सलाम अदी, टॉपिक इस वक्त शऊर नहीं था तो अच्छा जो लग रहा था अब बाशऊर है इस वजह से बुरा लगता है, अच्छा मनैया गाल हुई। ओके और ये है जाकिर हुसैन पंहर, अदी मुमताज मुलाई जो गाना उतरा जो हाजिर मुमताज मुलाई हलाईंदा सी, वाह देरी है सऊद देरी फ्रॉम नवाब शाह, सलाम अदी शो तुम्हारा नाइस आए मोहब्बतूं भा खुशामदीद। और ये हमारे साथ हैं कश्यप, कहती आप ही से डो मैं भी वेट, अच्छा कहती मैं भी वाइट एश लवली क्रीम लगाती हूँ आपके कहने से, मत्ता न मन्ने मंजल आयो बाबा, दादू का इमदाद जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफातला जतोई, भानजू मोबतुआन प्रोग्राम बुधो पया, वेलकम।

अच्छा सही सही मुंह तो नहीं समाज को ना तहां का पूछो जी मुके खबर पे तेने जो माजरो शाया के और निदवी की थी टॉपिक क्योंकि वो वक्त वो लोग सब चेंज हो गए हैं वक्त के हिसाब से अच्छा और मोहम्मद जमान के लिए सॉरी फॉर लेट बुआ जी इट्स ओके किशोर भाई आ चुके हैं सलाम अदा वालेकुम अस्सलाम प्यारा दा और जी एस नरमानी हमारे साथ वालेकुम अस्सलाम के तेसा मेची वयासी सिद्रा छाला उम्मीद त खुश हुंदा शाद हुंदो आबाद हुंदो न याद हुंदो नई विसरंदो हाउ वेलकम टू द तवांग के और ए मंसारी के ते माय बिगेस्ट प्रॉब्लम आई नोटिस एवरीथिंग सलाम टू ऑल अच्छा सलाम सही यार थोड़ो इधर उधर हो गया आपका मैसेज पर ऐसा समझी आते चाहते जो ये मानू भी डाडू जेको ना तकलीफ में हुंदा है जेके मानू हर चीज नोटिस करना है अनन की हर चीज जेको ना मतलब जहन में बैठी वेंदी है हाय ये काश न हो जिया ये न ओके दिस व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तमाम जे जहन में बैठा इनको न मुके उधर मुझे ये जानना है सोचना व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो केड़ो प्रोडक्ट तवां के जेको आ न लगायन घुर्जे या तवां सोचो ता बाबा ही प्रोडक्ट मुझे हिसाब से तैयार थेला है ओ ता मुखे बुधायो ही व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट तां पने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो आई व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगायो व्हाइटिश लवली क्रीम लगायो व्हाइटिश जो फेस वॉश आहे ऐं साबुन भी आहे ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब भी आहे हर तरह जा तवां के प्रोडक्ट मिली रहा है सो तवां अखियूं बूटे करे लगाए सको था को भी केमिकल इन जे अंदर एड ना है थेल तवां के नेचुरल अज़ा जगह इन जे अंदर मिलना है तवां के बिल्कुल खूबसूरती भी मिलेगी तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाएंगे और खूबसूरतियां हासिल करेंगे अच्छा अब्दुल गफार भाई हमारे साथ हैं खुश आमदी प्यारे भाई को वेलकम करते हैं नदीर कहती हैं आपकी जाना भी ठीक है बस जिंदगी से थक गई है थोड़ा सा ना करें भाई अच्छा किशोर भाई कहते अति मुबारक हो आप पुप्पू बन गई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सच्ची बताए मुबारक हो भाई बहुत ज्यादा आपको अच्छा अदील कहते हैं बेना समलाइन से रीड कीजिएगा रब कहता है किसी इंसान को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी खुशी की फिक्र मत करना बिल्कुल अच्छा अनवर भाई कहते हैं अच्छा तो चो अनवर भाई वाकई गर्मी घणी वधंदी वने पई सो पांजो ख्याल रखो इन गर्मी का पाण के बचाईंदा रहो ठीक अच्छा नताशा भी आ चुकी है प्रोग्राम में वालेकुम अस्सलाम नताशा कैसी है इतने डेंजरस सबको मार के फिर मरेंगे क्या बात है बिल्कुल अच्छा फहीम कहते हैं कि वो भी था जैसे पलकों पर बिठाया तूने ये भी मैं हूँ जो तेरे हिज्र का मारा हुआ हूँ वो जो अब मेरे खदो खाल पर हंसता है बहुत मैं उसी शख्स के हाथों से सवारा हुआ हूँ वाह वाह

0: मुजाहिद तो कहते हैं कि चापिक मुझे लगता है काम का सही वक्त होता है। हो सकता है जो काम हमने कल किया था वो ठीक वक्त था और आज उस काम करने का वक्त ठीक नहीं। अरे भाई यानी एकड़ी गाल आगे समझाया थी यानी कि असा एकड़ो पानी जिंदगी में कम कयो थे ठीक आ एकड़ी वो आसान चीज कई से वो आसान के मतलब लगे पे उन टाइम ते असा सफा सही आयो असा पांजी जगह ते बेस्ट आयो अज जे टाइम में वो कम कोई बियो करे पे वो सागोई सेम कम तो वो असा के गलत छो पियो लगे यो पूछो तवा का। अच्छा साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ एक प्रोग्राम सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। मोहम्मद ताहिर लुंड हमें सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम सेठ हाजरा से आप हमारे साथ हैं। बताएं जरा आपके एरिया में मिल रहे ही नहीं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट। अच्छा उनके अलावा वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट तुम अवेलेबल कराइंदा रहो तो नंबर से राबतो करो। मुझे यहां भी शिकायत मिली है तो नंबर से राबतो ना करो दोस्तो ये न क्यों बाबा ये न क्यों नंबर से राबतो करो कॉल करो उन्हें कि बुधायो तो फलान जगह से जो है वाइट एज का प्रोडक्ट कौन था मिलन अस लगान चाहूं था तुम सो मेहरबानी करी अवेलेबल कराए छो सो अवेलेबल कराए छींदा तुम्हें डायल करो है 03-15-799-0595 नंबर डायल करो टाइम न्यूज ब्रेक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूं वापसी जल्दी मोटी तुम्हारे नवजो ओ ही वही ही मोटा थी सो स्टेट कनेक्टेड कीप लिसनिंग वाइट एश अंडर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मोरू नौशहरो मीरपुर खास
3: लाड़काना
2: सक्खर
3: गूंज रही है हर जगह पर
2: सिंध की आवाज
3: GAFM 88 नेटवर्क। तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

ईरान में पंहिंजो कमु मुकमल कंदासीं। ईरानी ख़तरनाक ऐं बीमार ज़हीन आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में ईरान सां जंगबंदी ख़तम थी वई आहे। ईरान सां ॻाल्हियूं वक़्त जो ज़ियान आहे। ईरानी कूड़ा आहिनि ऐं ॿिन्ही मुल्कनि जूं टीमूं चाहिनि त ॻाल्हियूं जारी रखी सघनि थियूं। अंकरा में नेटो सरबराह सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अमरीकी सदर ट्रंप चयो त ईरान सऊदी कतरी जहाज़नि खे निशानो बणायो। अमरीकिया ईरान ते जवाबी हमला कया। स्पेन फज़ूल मुल्क आहे। हाणे स्पेन को बि तालुक नथो रखणु चाहियां। वापार बि न कंदुसि। स्पेन हाणे वापार लाइ मिनतूं करे रहियो आहे। असां सदाई नेटो जो दिफ़ा कयो, पर ज़रूरत वक़्तु नेटो असांजी मदद लाइ न आयो। मां नेटो मां ख़ुशि न आहियां।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: कर रहे हैं तो क्या बात है, और कौन ये इतने अच्छे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट की बात है, जाना चाहते हैं आप लोगों प्रोडक्ट से और क्यों इस्तेमाल को। जब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल डी के लिए दो प्रोडक्ट है और दूसरा डी दोनों की खूबसूरती के लिए सोच रहे हैं, हम क्यों करें ये जरा आप लोगों को समझाते हैं। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल हो एसी वाली बात जो है ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जिन लोग ज्यादा सेंसिटिव होती है, जिन लोगों के चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो जल्दी से सूट नहीं करता, स्किन के ऊपर सेट नहीं होता है, और वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो अगर आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव और आपको भी कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता, तो आप और अब एरिफ सेंसिटिव स्किन ये सेंसिटिव स्किन वाले भी लगा सकते हैं, जिनकी स्किन नॉर्मल टाइपो की स्किन जो लोग हैं ना वो सारे लगा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीड्स है, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ तैयार की गई है, आग सर्कल्स आ जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे की स्किन जो है वो ग्लो आती है, आपकी स्किन जो है सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल में अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे तो भाईजान कहीं देर हो चुकी लगाए ना। और अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप ये सोच रहे हैं कि हमारे तो एरिया में नहीं मिल रही, तो अगर आप अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, आप नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहेंगे। और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को मजीद बताऊं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपके जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, जो जल्द को नमी काम करती है और चेहरे को नरम मुलायम तरोताजा रखने में भी मदद देती है। अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप बाकायदा करते हैं तो आपकी जल्द की बेरोनकी कम हो जाती है, चेहरा ज्यादा साफ रोशन और दिलकश दिखाई देता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो कि नेचुरल अज्जा है जनाब, जाहिर सी बात है आपकी जल्द को फ्रेश एहसास देने के लिए और खूबसूरती देने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर रोजाना आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपकी जल्द की जो कुदरती निखारे ना वो ज्यादा निखर के आ जाएगा और आपकी खूबसूरती जो है वो आप लोगों को वाजे नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे पर जो ये इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं इनका कोई सलूशन होना चाहिए, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके पास मौजूद है, आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, और डी स्किन फेस वॉश तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा। डी स्किन फेस वॉश जो है ना ये इतना प्रीमियम क्वालिटी का है, ये दोनों प्रोडक्ट ही आप लोग जब परचेज करेंगे तो आप लोगों को एहसास होगा कि वाकई आप कितना अच्छा वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे हैं, ये इतना प्रीमियम सा एहसास देते हैं आप जब इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग खुद ही जान जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपने डी स्किन फेस वॉश भी इस्तेमाल करना है। और डी स्किन फेस वॉश की बात करें तो डी स्किन फेस वॉश जो है ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश के अंदर मौजूद है। तो अगर आप भी कोई अच्छा वाला प्रोडक्ट से परेशान हो चुके हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मरतबा जरूर लगाकर देखिएगा। ओके जी, सो यहाँ पर हमने डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश के बारे में तो आप लोगों को बताया, और इसी के साथ साथ अभी जो है ना आप लोगों की हम कुछ कॉल्स पिक करेंगे, कल नहीं की थी तो आज करेंगे। ओके सो आपकी कुछ कॉल्स में पिक करने लगी हूँ, और अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा कॉलिंग नंबर है 0 3 2 1 3 2 2 and 8। ये हमारा कॉलिंग नंबर है जो कि आप डायल करके हमें कॉल कर सकते हैं, तो कॉल कीजिए और उसके अलावा बताइए कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये है हमारा प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है एनजी स्किन ब्यूटी शो। ओके जी, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल आ चुकी है, देखते हैं फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
1: केरा से सगर मौजूद है।
2: ओके
1: इमदाद भाई, खुश आयो, ठीक ठाक मजे में?
2: शुक्र
1: अलहमदुल्ला, ठीक आया। प्रोग्राम बुधो पिया इमदाद
2: भाई?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम काफी पुराना लिसनर आयो मुझा, मुख्य बुधा तो टॉपिक बुधो तो वजी प्रोग्राम जो
2: नंबर
1: बुधाई प्रोग्राम बुधजो ओके नंबर डायल कर
2: 03 15

0: जी हाँ ये नंबर था
1: 15
0: जी
1: 83
0: जी
1: 90
0: जी
1: 555
0: वाह वाह
1: 555
0: ना ना 595 जी बिल्कुल इन नंबर ते तव्हां राबतो कजो पंहिंजे पनी अकेले में तव्हां अवेलेबल करायो ॿियो छा चवणु चाहींदा चलो शेला गुल जो तव्हांखे भलड़ो गानो ॿुधायां थी दोस्तनि खे यादि कंदा ओके थैंक यू सो मच दाद भाई।

0: ओके जी, आप भी कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर है 0332-1322-88। नेक्स्ट कौन हमारे साथ मौजूद है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, अति गुलूर का खालिक लाशारी गलाए
0: खालिक बहुत छाला खुश आयो।
1: अल्हम्दुलिल्लाह खैर बहन तुम बुदा?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। प्रोग्राम बताओ क्या?
1: आज ही प्रोग्राम आज डेली दिल से बुदा आयो।
0: प्रोग्राम जो नालो छाए मुखे बुदायो
1: अति वाइट एक ड्यूटी क्रीम दिया थी जते वजह प्रोडक्शन हो गया था सब याद है माशाल्लाह इस्तेमाल कर दाग दबा मोड़ा खत्म कर एड़ी खूबसूरत आने जड़ो चोरी है।
0: वाह वाह वाह वाह, मार समझा पे मता ता के न छी नालो न करे पुछो मा मुजा लिसनर काफी होशियार थी जाए नहीं है ना।
1: जी हां जी आना था लगा था ने प्रोग्राम में आना था
0: जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा वाह वाह, स्किन या वाइटिश?
1: वाइटिश वाइटिश।
0: चलो जबरदस्त जबरदस्त, मुख्य बधाई हो। तो टॉपिक बुधा, टॉपिक ते छा चवंदा?
1: आज टॉपिक जो टाइम वक्त मना।
0: चलो सही, या केड़न दोस्तन की याद कंदा? सही, या केड़न दोस्तन की याद कंदा?
1: अरे तो मुझे भाभी

0: 9033221. सो नेक्स्ट कॉलर और देखेंगे कौन मौजूद है. हेलो हेलो हेलो वालेकुम मौजूद आप. वाह सही वाह माना. दिल जाए क्यों.
1: जी बिल्कुल
0: बिल्कुल. तमाम
1: टॉपिक
0: न ॿुधो आहे. मूंखे इहो ॿुधाए त ॿियो छा चवंदा. थैंक यू सो मच प्यारा भाउ. तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई. ॾाढो सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए. तव्हां वाई वाह तरह. ये तो कॉल हमारी हो गई ड्रॉप.
1: हैलो
0: हैलो केरु मौजूद आहे. अच्छा मोरो खां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया. भाउ कहिड़ो प्रोग्राम ॿुधो पिया. नालो नथो अचे माना सॼो. वाइट एश ब्यूटी क्रीम तव्हांजे मोरो में मिले थी. मूंखे ॿुधायो त
1: जांच करणी पवंदी सर.
0: जांच कयो न सर. बिल्कुलु जांच कयो पोइ मूंखे ॿुधाइजो कॉल करे ईअं जी अॼु कई अथव. मूंखे ॿुधाए कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदो प्यारो
1: भाउ.
0: थैंक यू सो मच. थैंक यू प्यारा भाउ प्रोग्राम में कॉल कयो. माशाल्लाह इलाही सुठा असांजा प्यारा प्यारा सुहिणा सुहिणा लिसनर असांखे ॿुधनि पिया. ऐं मोरो में तव्हां जांच कराए ॾिसो. मिले थी त ठीकु आहे, नथी मिले त पोइ तव्हां अवेलेबल करायो. इन जे लाइ तव्हांखे नंबर डायल करणो आहे 0315799 0. शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ब्रेक वठूं था. उनखां पोइ जल्दी जूं था. तव्हां हिते वेठा वञो हीअ मोटा वठी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो बाय. वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट हणंदा रहो ऐं सुणा थींदा रहो.
2: It's 2:30. Black is brought to you by
3: Hello Bleach Cream. De aur de char guna brightness. Chamak aisi diamond skin jaisi. Hai me
4: Prickly Heat Soap. Jaldi infection se bachao ka behtareen zariya hai.
5: Prickly Heat Soap.
4: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
5: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Chayo chayo keel maha soap.
5: Soap. गर्मी एहसास हजरती निखार.
4: नीम प्रिकली
5: जल्द को गहराई तहफ़ फराम करने की वजह से होने वाली खारिश और फकीरी. नीम प्रिकली हीट सॉप.
4: हर अरे नाम लेकर तलब कीजिए.
6: खूबसूरती जो सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए चमकदार. सिर्फ ये कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
7: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़. सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो.

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क,
2: GFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

जी बस आप निदड़ी की पुप्पो जैसी मत बनना, मेरी पुप्पो जैसी बना बिल्कुल जी, मैं अच्छी वाली पुप्पो बनूंगी। अच्छा ए मंसारी कहते हैं टॉपिक पर हम सफाक माइंड के लोग खुद फोकियत करते हैं, लेकिन बात असल में ये होती है कि हमें मुंह की लगी हुई होती है।

ओके जी, निदली कहते हैं चलें जी, क्या बात है आपके। और दीदार अली बिरोही हमारे साथ मौजूद हैं। बिरोही गाना सुनना चाहते हैं, चलिए मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना लगाएंगे। नजीर कोसो में सुन रहे हैं बलोचिस्तान सांस से खुशामदीद। भाई लिखते हैं, अगर इंसान की इज्जत करें चाहे उसका ताल्लुक किसी भी तबके, रंग या नस्ल से हो, मर्तबे और पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, किरदार से बड़ा होता है। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर कर दी है। लेकिन आज के जमाने में ये सब चीजें मुझे लगता है कि मैटर करती हैं, और मुझे ये भी लगता है कि नहीं करनी चाहिए लेकिन क्या कर सकते हैं, एक इंसान के कहने से और एक इंसान के सोचने से पूरी दुनिया तब्दील नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक इंसान एक अच्छी सोच रखता है, एक इंसान सोच से अगले इंसान की साजो है ना, वो अच्छा जो बिहेव करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग आप कोशिश कीजिए, अच्छा नहीं किया तो उसको लेकर आप कम से कम कोशिश करें कि आप अच्छे रहें।

अच्छा बिलाल अली आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम बिलाल, कैसे हैं? ओके जी लिखते हैं आ, शायद बबर जा फेन आयो, मां कोशिश क्या थी टाइम बची हो तो हलाई था तवाज लाना, तो मम्मी हलाई दा सी और मां से गड मोहम्मद साले लगारी हमारे साथ से, आप हमारे साथ साथ खुश आमदीद। अच्छा अजो कुछ नवा नवा भी शामिल थे ना, तो मुखे लग थनी आ, तो कुछ ये चार पंज मानू आन कॉलर जी कॉल लगी वेंदी आ डेली बेसिस ते, उए अजो कुछ लगो तो बाबा थोड़ी चेंजिंग हुई ये हुए तो बेहतर आ ना, ये अगर जी मू कॉल कन था एकड़ो दिन ता कई वरी बटे दिन ता सबर कयो तो उनन मानन के भी मौके मिली वेंदो जी मू कॉल करन चाहन था, कि उनन मानन जी वजह सा उनन मानन जी भी कॉल न लगी सकंदी आ, जी बेचारा सालन का कोशिश कंदा पर उनन जी कॉल न लगी सकंदी आ। सो रोज रोज गलन का पवा मतलब स्पेस दई करे पो गल जी सबनी जो कॉलिंग प्रोग्राम में लगंदी रहा लगंदे मां मतलब जी

भाई ना भला भला गाना कहना है उधारो वो गाना ऐसा नहीं वो भी बदना से क्या जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अगर आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल जी बताइए। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को पता है कि वाइट ही है और वाइट वॉश मिल रहा है, तो ये दो महीना में तैयार किए गए हैं। तो अगर आप नाइट क्रीम कोई अच्छी से लगाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए है, और कोई अच्छा सा फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन फेस वॉश आप, जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्लीन करता है और हाइड्रेट रखता है। तो इतने जबरदस्त इतने शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद है, तो फायदा उठाइए ना, इस्तेमाल कीजिए।

0: हैं।
1: अच्छा, हमारी प्यारी दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद कहती चंदा, हम खुद को सही समझ रहे होते हैं मगर हम होते गलत हैं। जब कोई और ये काम करता है तो वो हमें गलत लगता है। ओके, लुबी आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम कहती सिडो, जानी क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ। नाइस यू सिडो, आ चुके और साथ में घूमने भी जा रहे हैं आज। क्या बात है जी, घूमी घूमी करिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और फजीला सिंधी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, क्या कहती हैं भाई। आप जानती हैं कि आपकी जो सिदरा है ना, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो फजीला आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं और खुश रहें।

बिल्कुल जी, तव्हां पाण दुनिया खे छॾे करे अगरि अच्छा थियण चाहियो था त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु लाज़मी कजो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा पोइ तव्हां अच्छा थी वेंदा, वाकई अच्छा, समुझो था। ओके जी, आशिक खास के लिए मैं सुन रही हूँ वालेकुम अस्सलाम, भाई को प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। अच्छा चाचा खालिद कहते पुफो मिठाई शुगर फ्री खपे, चाचा मिठाई खाईंदा। मां मिठाई जी शौक़ीन आहियां, तव्हां जे सॼी बि मां खाई छॾींदसि। आमिर खान भाई सर में सुन रहे हैं, हेलो। अच्छा कुर्बान अली कमरानी भाई वालेकुम अस्सलाम, दादू सी आप हमें सुन रहे हैं। और किशोर भाई कहते हिकड़ो पूरो डी कॉल के दे, सत मिंट में घणियूं कॉलियूं लगंदियूं, कुछ तू भी समझ, आऊं तोखे समझाए समझाए कुराड़ो थी वेंदसि। हा मां सोचींदी आहियां त वाकई ईअं कीअं, हिकड़े ॾींहुं सॼियूं कॉलियूं वठां, वरी ॿिए ॾींहुं सॼा मैसेज पढ़ां, वरी टे ॾींहुं सॼियूं कॉलियूं वठां, वरी चोथे ॾींहुं सॼा मैसेज पढ़ां, ईअं कयूं जीअं चओ। अच्छा ये तो आप जानते हैं कि हमारा ये जो प्यारा प्रोग्राम है इसके लास्ट लिंक में हम सुतल गाना बुधंदा आयूं, सो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें। स्किन ब्यूटी क्रीम आपके मार 3595 ये नंबर है, स्टोर पर वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा सकते हैं। सिंधी में भी ॿुधायां थी, जेको उन्हनि नंबर 9099। शेख ही सिदरा प्लीज प्ले अहमद मुगर, हाँ मैं कोशिश क्या थी हली सुबाने बुधना से अरिबा के भी आप ही चले जी, कोई बात नहीं। और शोनी क्या कहती है, शोनी माहौल का जो ना वो थोड़ा सा फर्क होता है और आप ये चीज थोड़ी जहन में रखा करें। अच्छा किसी का पैनल पर खाली भी मैसेज आ गया तो जिसका ना पढ़ूं तो समझ आइएगा। और फहीम शेख हैं हमारे साथ, अच्छा नदीम अली शेख भी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच, भाइयों को वेलकम करते हैं।

ओके जी, अल्ताफ बलोच जाग जानी चाचू हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, कहते हैं अनवर विस्तरों का गाना सुनाइए। सो थैंक यू सो मच, आपको खुश आमदीद करते हैं।

आलिया सुमरो का गाना सुनना चाह रहे हैं, सबको डेडिकेट जो है तो टीज किसमी लगाइएगा। और उसके अलावा एएम अंसारी कहते हैं कि हम तुम्हें समझते ही नहीं, मध्य मुकाबल अपना तुम फजूल में बने फिरते हो मुखालिफ मेरे। क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और यहाँ पर हमारे जाने का

बिल्कुल करीब आ चुका है और आप लोगों से इजाजत लेते ही वरी सला तमाम से मुलाकात जिकाए हुआ मुझे थी इंदी 5 बजे वाले प्रोग्राम में सो 5 बजे वाले प्रोग्राम में लूं था सो पांजो ओ हीरो सच आई अगर किथे का गलती थी मुझे मुखान द माजरत कयो था जना सॉन्ग्स रेजी वया जना फीडबैक रेजी वया जना सबनी का माजरत कयो था सो सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय ऑल एंड टेक केयर।

जहाजी फिजाई ए बहरी सर्च ऑपरेशन जारी। कार्गो जहाज के किरियल मुबैना हंध की निशानदेही बाद गोला वारो ऑपरेशन तेज कयो वयो। पाक बहरिया जा बहरी जहाज ए एक एटीआर

0: गोला में शामिल। पाक बहरिया जो जदीद जहाज बेगोला में मसरूफ। बेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ऐं मर्चेंट वेसल बे गुम थियल जहाज जी गोला में रुधल। कार्गो जहाज सां कराचीअ खां 155 नाइटल मेल जे फासले ते राब्तो काटा थी वियो हो। कार्गो जहाज में अमले जा 5 ॼणा सवार हुआ। गुम थियल जहाज जे मुआविन पायलट फैसल महमूद जतोई जो ताल्लुक नवां जतोई जे भरवारे ॻोठ थोड़ा शरीफ सां आहे।
1: ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी जो मड़ आख़िरी रस्म जी अदायगी लाइ ईरान खां इराक मुंतकिल। हज़रत अली इस्लाम जे रोज़े में जनाज़े नमाज़ अदा। हज़ारे माण्हुनि जी शिरकत। शहीद आयतुल्लाह खमेनी जे मड़ खे नजफ पहुचण ते ईरानी फोर्सिस सलामी बि पेश कई। शहीद आयतुल्लाह जे मड़ जी तदफ़ीन सुभाणे मस्जिद में कई वेंदी।
0: वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो क़ौमी असेंबली जे मनसूबाबंदी बाबति पार्लियामेंटी कमेटीअ सां इजलास। सूबाई वज़ीरनि जे शिरकत। रस्तनि जे 5 वॾनि मनसूबनि जो जाइज़ो वरितो वियो। वफ़ाक़ी तरक़ियाती प्रोग्राम तहत सूबे जे अहम 5 रस्तनि जी तामीर जो कम जून 2027 ताईं मुक़ररु करण जो हदफ़ मुक़ररु। मुराद अली शाह चयो त समूरा रस्ता मुआशी माग आहिनि। तरक़ियाती स्कीमनि खे वक़्त ते मुकमिल करण लाइ फंडनि जो इंतज़ाम अंडर आहे।
1: वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी जी न्यूयॉर्क में चीनी हमनसब लिंग विज़िफांग सां मुलाक़ात। अंदरूनी सलामती वारनि मामलनि में भाईवारी वधाइण ते इतफ़ाक़। बार्डर मैनेजमेंट गैर कानूनी इमिग्रेशन मंशाह जे ख़ात्मे लाइ मावन ते हथी ॾियण ते ज़ोर ॾिनो वियो। मोहसिन नक़वी चयो दहशतगर्दी जे फंडिंग रोकण जी ज़रूरत आहे। दहशतगर्दनि जी पुठिभराई ऐं फंडिंग मुलस मुल्कनि ख़िलाफ़ गॾिजी कम करणो पवंदो। चीनी घरु वज़ीर चयो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान जे क़ुर्बाननि खे क़दर जी नज़र सां ॾिसूं था।
0: दादू में सिंध एक्शन कमेटी जी मेज़बानी हेठि क़ौमी कॉन्फ्रेंस। सियासी समाजी अॻवाननि जी शिरकत। कराचीअ खे वफ़ाक़ हवाले करण वारी साज़िश रद्द। मुआहिदे मूजिबि पाणी ॾियण जो मुतालबो। सूबे में थियल करप्शन जी अणधुरी जांच कराइण जो मुतालबो। अॻवाननि चयो त नौकरियुनि जो विकिरो बंदि करे नौजवाननि खे मेरिट ते रोके ऐं ॿियनि अॻवा थियल मासूम ॿारनि खे बेबहाल करायो
2: वञे।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

बाद में सिर्फ एक हसरत बनकर रह जाता और सीधा अपनी कमरे का दरवाजा खैरियत अभी से उनके पास बैठ बस आपके पास। जाहिद ने दिल ही दिल में सोचा काश हर रिश्ता पहले इंसान उसकी कदर करना सीख जाए। यही है आज का पैगाम आप सबके नाम। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम इन अवर शो जी मीरपुर खास FM 88 के लाइव स्टूडियो से। कैसे हैं? हम हमेशा आमती आमती

0: आई एच ब्यूटी एलोवेरा और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिससे मिनरल अब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश को दे बेतिखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले के साथ व्हाइट एज प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: दर्द,
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी इंडेक्स ऑइंटमेंट के साथ?
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेश ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम,
2: आसाबी दर्द, पट्टों के खिंचाव, मोच और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: मोरे पिया, 30 से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6।

0: रात जो 8 बजे ताईं, सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं ऐं छंछर ते क्लिनिक बंद रहंदी। राबते जे लाइ मोबाइल नंबर 1587947540661।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहजी 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क जिंदगी आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: खुशखबरी लाड़काने शहर

0: मोरे पिया, तीज से जुम्मा, रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सच जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हची FM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾ ਹੈ। अमरीकी अमलन बाद मफाम जो कुछ हिस्सा गैर मौसर थी विया ईरानी कौमी सलामती ए खुदमुख्तियारी जो दिफा कद ईरानी परडेही वजीर अब्बास चिराग़ची है तो अमरीकी अमलन लबनान में इसराइली कार्रवाई में तेल के विक्रे के पाबंदन से मफाम जो कुछ हिस्सा गैर मौसर थी विया ईरान हमले से अमरीकी अडन के निशानो बणाईंदा। ईरानी हम मोहम्मद बाकर कालीबाज है तो गुंडागर्दी ए भत्ताखोरी के दौर खत्म थी व्या है ईरान झुकण वारन में ना है। अमरीका ईरान के एकवे अमलन बाद चीन ए कतर मफामत लाए सरगरम बिन्हीं मुल्कन जो धुरियन कामला रोकण जो मुतालबो चीनी परडेही वजारत के चौबर में जंग के बीहर शुरूआत कई जो मफाद में न हूंदी धुरियों तकरार जल लाए गाल तरफ मोटन कतरी परडेही वजारत चो तो छिकाण के खात्मे लाए गाल ही वाहिद रस्तो आन। शारजा का कराची इंदे गुम थियल निजी एयरवेज के कार्गो जहाज की फिजाई ए बहरी सर्च ऑपरेशन जारी कार्गो जहाज के किरियल मुबैन हान की निशानदाही बाद गोला वारो ऑपरेशन तेज किया वो पाक बेरिया जब बहरी जहाज ए एक एआरटी जहाज ब गोला में शामिल पाक बेरिया जो जदीद जहाज ब गोला में मसरूब मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ए मर्चेंट वेसल ब गुम थियल जहाज की गोला में रुधल कार्गो जहाज से कराची का 155 नॉटिकल मेल के फासिले से राबतो काटा थी पो हो कार्गो जहाज में अमले जा पंज जणा सवार हुआ गुम थियल जहाज के मावन पायलट फैसल मेमून जतो जो तालुक नवा जतो की भरवारे गोड़ थोड़ा सा शरीफ सा आहे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमनाई जो मड़ आखिरी रस्म की अदायगी ला ईरान का इराक मुंतकिल हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोजे में जनाज नमाज अदा हजारे मानन की शिरकत शहीद आयतुल्लाह खुमनाई जो मड़ के नजब पहुंचने पर ईरानी फोर्सेज सलामी में पेश कई शहीद आयतुल्लाह जो मड़ की तदफीन सुभाने मस्जिद में कई वेंदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो क़ौमी असेंबली जे मनसूबेबंदी बाबति पार्लियामेंटी कमेटी सां इजलास सूबाई वज़ीरनि जी बिशरकत रस्तनि जे पंजनि वॾनि मनसूबनि जो जाइज़ो वरितो वियो। वफ़ाक़ी तरक़ियाती प्रोग्राम तहत सूबे जे पंज अहम रस्तनि जी तामीर जो कम जून 2027 ताईं मुक़रर करण जो हदफ़ मुक़रर। मुराद अली शाह चयो त समूरा रस्ता मुआशी माग आहिनि तरक़ियाती स्कीमनि खे वक़्त ते मुकमल करण लाइ फंडनि जो इंतज़ाम अणटर आहे। वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में जिनी हम मनसब लिंग जिफांग से मुलाकात अंदरूनी सलामती वारे मामलों में भाईवारी बढ़ाने के इतफाक बॉर्डर मैनेजमेंट गैर कानूनी इमिग्रेशन मंशा के खात्मे लिए मामले के हथी डेण से जोर दिनों वो मोहसिन नकवी चो दहशतगर्दन की फंडिंग रोकने की जरूरत है दहशतगर्दन की पुटभराई और फंडिंग में मुलिस मुल्क खिलाफ गर्जी कम करो पव चीनी घर खिलाफ जंग में पाकिस्तान के कुर्बानन के कदर की नजरों से ऊँ था। दादू में सिंध इलेक्शन कमेटी की मेजबानी हेठ कौमी कॉन्फ्रेंस सियासी समाज अगवाणी शिरकत कराची के वफाक हवाले करने वाली साजिश रद्द मुआदे मूजिब पानी डेण जो मुतालबो सूबे में थियल करप्शन की भी अणधुरी जांच कराने जो मुतालबो अगवाणी जो नौकरियों जो वेकरो बंद कर नौजवान के मेरठ से रोजगार दिनों वे प्रिया कुमारी बिन अगवा थियल मासूम बारों के बिना देर आजाद कराया वे सूबे में अमन अमान भी बहाल कराया वे। असी सिंधवासी जातिन कबीलन में विरायल आयो पर दरिया के मामले से सब गड आयो शिकारपुर में मीडिया से गलाइंदे जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो चवाद बिलावल आसफा बख्तावर से रत जो रिश्तो है कदें भी मतन तनकीद ना कई बिलावल बख्तावर आसफा पान में को भी फर्क न तो समझा। इंसानियत के अलमबरदार अब्दुल सत्तार एदी के विछोड़े के 10 साल मुकम्मल सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा अब्दुल सत्तार एदी के भेटा पेश सदर आसिफ जरदारी चो तो अब्दुल सत्तार एदी खिदमत खल्क इंसान जो रोशन मिसाल हो इंसान की खिदमत वालों दर्स सदाई रोशन रहो वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो अब्दुल सत्तार एदी जो सियासी समाजी खिदमतों रोशन बाब आ नौजवान नसल के एदी के किरदार में सीखण घुर्ज।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो बुधंदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: धरती से अल शहबाज
1: खत्ते की बनी है आवाज,
0: जीए एफ
1: की आवाज,
2: जीए हरिवन।
3: देखते हैं कौन है हमारे साथ। वेलकम कहेंगे, बात कर रही हैं। महक आ गई हैं, कैसी मैं दौलत कामयाबी सुकून जो और बहुत अच्छे होते हैं, फट आप भी हमें सुन रहे हैं। लेकिन ये सब अब होना है कुछ ही देर बाद, क्योंकि यहाँ पर बोलती बंद करने का टाइम है, यानी कि आपको ज्वाइन करते हैं। एनीवेयर इज रविदर
4: की हो तो आप
5: फखरिया पेशकश फकीरी क्रीम
4: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
5: ये मासर क्रीम मुतासर से जज्ब होकर
4: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
5: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
4: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ
5: के दर्द
4: और पट्टों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
5: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: उमरा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
5: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: ही एब्जॉर्ब हो जाए। आपको निखर ताजगी के साथ वाइट एक्स प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मोहम्मद उमर बुग्यो ट्रस्ट हॉस्पिटल जिते माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर की निगरानी में मुनासिब

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

मोहब्बत जान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: एक सीरियल महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जिसके कोशिश करने वाले को सजा है मगर काम कर लेने पर सजा नहीं। इस सवाल का जवाब मालूम है तो आपने डायल करना 03136615688। आपकी नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद आजम अर्ज कर रहा हूँ खास
0: ऐसी। वेलकम कहेंगे अंकल आपको, आपने गाना सुना।
1: जी जी बड़ी मेहरबानी, आपने आंसर पूछा है।
0: सॉरी क्या बताया आपने?
1: खुदकशी।
0: ठीक है, उसका जवाब। ओके जी, हमने पूछा आपसे वो कौन सा काम है जो करने वाले को सजा मिलती है और हो जाए अगर वो काम तो उसकी पनिशमेंट नहीं होती है, तो जनाब सुसाइड यानी खुदकुशी। और इस सवाल का आंसर हमें बताया है मीर बुखार से आजम अंकल ने। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट सवाल

0: अच्छा जी, अब आपने हमें बताना है सफेद हाथी यानी व्हाइट एलिफेंट किस मुल्क में पाए जाते हैं। आपको मालूम है इस सवाल का जवाब कि सफेद हाथी किस मुल्क में पाए जाते हैं। अगर आपको सवाल का जवाब मालूम है आपने डायल करना है 03136615688। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर? अच्छा जी, क्या आंसर है हमारे सवाल का? राइट आंसर है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, ये जब भी हमारे भाई आते हैं लाइन पर तो सब हमेशा जो है ना दुरुस्त जवाब के साथ ही आते हैं। थाईलैंड अब वो कंट्री है जहां सफेद हाथी पाए जाते हैं। इकबाल बॉश का जवाब, मुंह पे घंटी, आपने बताना है ये कौन है। रंग हरा है मुंह पे लाली, गले में घंटी काली काली। रंग हरा है मुंह पे लाली, गले में घंटी काली काली, क्या आंसर है इस रेडिल का, ये आपने हमें बताना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या आंसर है? वाह जबरदस्त, राइट आंसर है हाफिज जनाब। और बहुत से घरों में जो है ना इसे पाला भी जाने उड़ने वाला, लेकिन बहुत है। अच्छा, खुशी मनाई जाती है, लोग खुश इतना खुश होते हैं इससे भी हैं, हालांकि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है किसी की पिटाई पे ऐसा चाहिए। तो जनाब आपने मुझे बताना है कौन है जिसकी पिटाई पर सब खुशी से झूमते हैं नाचते हैं। मालूम है ना आपको इस सवाल का जवाब, तो आपने डायल करना है 03136615688। आपकी कॉल शाम ले प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: कौन बात कर रहा है? अदा क्या जवाब है सवाल का? हेलो, नाम बताना था आपने, चले ठीक हो गया। दो मरतबा आप कहते थे, तीसरी बार क्या जरूर बताने की। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा जी का भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा
2: है?
0: खुश आमदीद कहते हैं आपको। अदा वो कौन है जिसके नाचते सब खुश होते हैं?

ಜಿಂದಗಿಗೆ ರೋಜಾನೋ ಮೆಂಟಂತಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್.

आज से गुलनाज आपके शो की जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है, बहुत शौक से आपका प्रोग्राम सुनते हैं अब्दुल रज़ाक, थैंक यू, वेलकम कहेंगे आपको। और आपकी आवाज मुझे सही से समझ नहीं आ रही थी, अंदाजे से आंसर्स दिए, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम कौन है, आज के लिए माजरत। हर टाइम आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से गीत सुनवाएं आपकी फेवरेट सिंगर का।

चलें आपके ऐसे मैसेज पर भी नजर डालते चलें। इस वक्त कौन सुन रहा है हमें? अच्छा, जुल्फिकार अली है हमारे साथ। आपने कहा हमेशा के लिए अगर हमें मौका मिल रहा हो कुछ लेने का तो हम सच्चे दोस्त लेंगे। ओके, शुक्रिया। गुड इवनिंग, हाय गुलनाज, हाउ आर यू? शो इज वेरी नॉम कराची अरेंगे। और आपने भी काफी दिनों किया है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अल्ता ने ज्वाइन किया, शुक्रिया।

सुपर प्रोग्राम एंड नायाब शो, हमारे आने की हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं, सदा सलामत रहें आप। और कबीर मल्ला है आई थिंक, क्योंकि आपकी है जो आपका मैसेज जो है ना, इसमें आपका जो है आधा अधूरा मैसेज आया है हमें मिला, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तुम मेरी रूह की आवाज हो, तुम बहुत खास हो, जस्तजो में थी तेरी तमन्ना कब से, खुशबू में लिपटा राज हो, तुम बहुत खास हो, तेरी हर बात पे दिल धड़क जाता है, तुम मेरी जात का आगाज हो, तुम बहुत खास हो, तुम्हारे लफ्ज मेरी सोच में समाए हैं, रूप का दिल फरेब सांस हो, तुम बहुत खास हो, एक हकीकत भरा मजाज हो, तुम बहुत खास हो, तुम बहुत खास हो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
1: न्यूज। मौसम नकवी खिलाफ जंग में पाकिस्तान के कदम के कदर की नजर से कॉन्फ्रेंस कराची जो मुतालबो सूबे में थियल करप्शन जीप अणधुरी जांच कराने जो मुतालबो अगवाणन जो नौकरियों जो वेकरो बंद करे नौजवान के मेरठ से रोजगार दिनों वे प्रिया कुमारी बिन अगवा थियल मासूम बार बिना देर आजाद कराया वे सूबे में अमन अमान भी बहाल कराया वे। असी सिंध वासी जातन कबीलन में विरायल आयूं पर दरिया के मामले से सब गड आयूं। शिकारपुर में मीडिया से गलाइंदे जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो चवा बिलावल आसफा बख्तावर से रत जो रिश्तो है कदें भी मतन तनकीद ना कई बिलावल बख्तावर आसफा पाने में को भी फर्क नो समझा। इंसानियत के अलमबरदार अब्दुल सत्तार यदी के विछोड़े के 10 साल मुकम्मल।

स्पेन फजूल मुल्क आहे, तालुक रखण नथो चाहियां। सदाई नेटो जो दिफ़ा कयो, ज़रूरत ते वक़्त नेटो मदद लाइ न आयो, नेटो मां ख़ुश न आहियां। अमन वाइदे बावजूद अमरीका ऐं ईरान जा हिकु ॿिए ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। अमरीकी सदर ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास ते हमले जी वीडियो बि जारी करे छॾी। ईरान जा बि अमरीकी हमलनि बाद अमरीकी अॾनि ते हमला। कुवैत ऐं बहरीन में बि अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी सेंटका मूजिब अमरीकी फ़ौज ईरान में 80 खां वधीक हदफ़नि खे निशानो बणायो आहे। ईरानी जी फज़ाई दिफ़ाई निज़ाम साहिली रेडार्स ऐं निशानो बणायो वियो। पासदार इनकलाब चयो आहे त ईरानी हमलनि जे जवाब में बहरीन ऐं कुवैत में कई अॾनि 85 हदफ़नि खे निशानो बणायो वियो आहे। हिकु अमरीकी ड्रोन बि तबाह कयो आहे। ईरान ते हमलनि में सहूलियत ॾींदड़ फ़ौजी अॾा जाइज़ निशानो हूंदा।

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मर्चेंट वेसल भी गुम थियल जहाज की ॻोल्हा में रुथल। कार्गो जहाज सां कराची का 155 नॉटिकल मील जे फासले ते राब्तो काटार थी वियो हो। कार्गो जहाज में हमले जा 5 जणा सवार हुआ। गुम थियल जहाज जे 52 पायलट फैसल महबूब जतोई जो तालुक नवा जतोई जे भर वारे ॻोठ थोड़ा शरीफ सां आहे। ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई जुमड़ आख़िरी रस्मनि जे अदायगी लाइ ईरान खां इराक मुंतकिल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे रोज़े में जनाज़े नमाज़ अदा, हज़ारे माण्हुनि जी शिरकत। शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनेई जे मड़ खे नजफ़ पहुचण ते ईरानी फोर्सेस सलामी बि पेश कई। शहीद आयतुल्लाह जे मड़ जी तकफ़ीन सुभाणे मशहद में कई वेंदी। वाज़े मौक़िफ़ आहे त दहशतगर्दनि ऐं सदन सहूलतकारनि जे ख़ात्मे ताईं कार्रवायूं जारी रहंदियूं।
2: And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
1: मुंहिंजे ख़्याल में ईरान सां जंग वधी ख़तम थी चुकी आहे। ईरान सां ॻाल्हियूं वक़्त जो ज़िया आहिनि। ईरानी कूड़ा ऐं ज़हनी बीमार आहिनि। टीमूं चाहिनि त ॻाल्हियूं जारी रखी सघजनि थियूं। ईरान में पंहिंजो कमु मुकमल कंदासीं। अंकरा में ॻाल्हाईंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त ईरानी बहरी जहाज़नि खे निशानो बणायो। अमरीका जवाबी हमला कया। स्पेन फज़ूल मुल्क आहे। तालुक रखण नथो चाहियां। सदाई नेटो जो दिफ़ा कयो। ज़रूरत वक़्तु नेटो मदद लाइ न आयो। नेटो मां ख़ुशि न आहियां।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्टों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: ग्रीनो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हक सच जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो बुधंदा रहो हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
0: एफएम
1: की आवाज।
2: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हम नवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
1: उसी खिप्ती है आवाज
0: जीए एफएम नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर ना रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: मम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: गम। देखिए नया ड्रामा सीरियल रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज प्रभात मटियारी FM।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें. क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ.
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट.
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है.
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्टों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद.
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं.
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार.
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज. उधरदा रहो, उधरदा रहो.
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
4: GA FM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज.

इतिहाद, नज़म ऐं ज़ब्त सां खटबियूं आहिनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अॼु राति हिकु भेरो ॿीहर ईरान मथां हमले जी धमकी ॾेई छॾी। तुर्किया जे शहर अंकरा में यूक्रेन जे सदर ज़ेलेंस्की सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान सां जंगबंदी ख़त्म थी चुकी आहे, ईरान सां ॻाल्हियूं करण वक़्त विञाइण बराबर आहे। अॼु राति हिकु भेरो ॿीहर वॾा हमला करे सघूं था, ईरानी कूड़ आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं हुननि अपना हुर्मुज़ में जहाज़नि ते ड्रोन हमला कया। डील खां सवाइ बि तेहरान जे एटमी हथियार हासिल करण वारी सघ ख़त्म करे सघूं था।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ते ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का
1: नया लाइफ।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जब दिमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके के भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारिम को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: उस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: McGreeno.
1: हक सच जो आवाज, संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी
1: करते हैं जो आलिया मेकअप वालों की डेंटल एंड बातें न करो तुझे
0: ब्यूटी प्लान के साथ एलोविल और एवोकाडो स्किन में फोरी स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए आपको देवदा निखरा चेहरा वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: जिस धरती से जुड़ा है
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: जिए
3: हिंद की आवाज

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उदंदा रहो उदंदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: ये भी तो जरूरी हुआ ना कि इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस इजहार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खा मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: तुम्हें बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाल लिया तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना फिर तमाशा बन गई मामा।

0: से तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। एक बार कहती थी कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो उतरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

देखिए मोहब्बत दाग की सूरत, बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

सरहद पार का थींदड़ दहशतगर्दी के रियासत पूरी ताकत से चिथे छदींदी। दहशतगर्दन जूं महफूज पनाहगाहूं सहूलतकार मुकम्मल तौर खत्म कया वेंदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे दौरान ग्रेजुएटिंग आफिसरन के खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जंग के बदलजंदड़ नोयत दिसंदे पाकिस्तान के हथियारबंद फौज पैंजी हिकमत अमली जदीद घुर्जन से पूरी कर रही है। दुश्मन जो पाकिस्तान के गैर मुस्तकम करने वाली सभी कोशिशों नाकाम बनाई वेंदियों। जंगियों मीडिया या बयान सियासी इदारन से न पर ईमान इतिहाद नज़म जब्त से खटी वेंदियों आहिन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अज रात एक भेरों बीहर ईरान मथा हमले की धमकी दई छी। तुर्की के शहर अंकारा में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग बंदी खत्म थी चुकी है। ईरान से गाल वक्त विन्याण बराबर है। अज रात एक भेरों बीहर वडा हमला कर सकूं था। ईरानी कूड़ा गुजर डी अपना हुर्मुस में जहाजन ते ड्रोन हमला किया। डील का सिवाय भी तेहरान जेटमी हथियार हासिल करने वाली सग खत्म कर सकूं था।

0: शारजा जेॾी महिल सामान खणी विया त उते जहाज़ में फॉल्ट अची वियो। मुंहिंजी नियाणी खे फोन कयो त मां 10 मिंटनि में निकिरां थो, इहो कल्ह जी ॻाल्हि आहे। जेॾी महिल 10 थिया त मुंहिंजी नियाणी असांखे घर फोन कयो। कुझु टी राति करण जी असां गूगल ते सर्च कयो त उन ते इहो आहे त जहाज़ क्रैश थी वियो आहे। त एजेंसियूं आहिनि जेके इदारा आहिनि कमु कनि पिया, ऐं उन्हनि सां राब्ते में फैसल जो जेको वालिद साहिब आहे नाज़िम जो उहो ऑलरेडी अलाह करे को मौजूदु थी थो आहे, सही सलामत वापसि।
1: शारजा खां कराची ईंदे गुम थियल निजी एयरवेज जे कार्गो जहाज जो मलबो बलोचिस्तान जे सामुंडी इलाइक़े ओरमाड़ा मां हथ अची वियो। नवां जतोई वासी को पायलट फैसल मोहम्मद जतोई समेत अमले जे 5 ॼणनि जो पतो न पियो। अमले जी ॻोल्हा पाक बहिरिया जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुम थियल को पायलट फैसल जतोई जे सहुरे KTN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त जहाज में सवार थियण खां अॻु फैसल पंहिंजी घरवारी सां राब्तो कयो हो। खेसि 4 ॿार आहिनि, संदसि वालिद बि पायलट ॾेई चुको आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: McGreenough.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

आसान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: मेहरबानी होगी।
1: पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ पैसा भारत ऐं माण्हू अफ़गान तालिबान फराहम करे रहिया आहिनि। पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी जे समूरनि वाक्यनि में अफ़गान शहरी मुलविस निकिता आहिनि। दहशतगर्द किथे बि लिकल हुजनि निशान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त कराची वाक़े में बि चइनि दहशत अफ़गानी हुआ। बलोचिस्तान वाक़नि में बि अफ़गानी दहशतगर्द मुलविस आहिनि जिन खे भारत ऐं अफ़गान तालिबान रेजीम जी सहूलतकारी मिलियल आहे। दुश्मन नथो चाहे त पाकिस्तान तरक़ी करे। ईरान मथां हमले जी धमकी ॾेई छॾी। ज़ेलेंस्की सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त ईरान सां जंग बंदी ख़तम थी चुकी आहे। ईरान सां ॻाल्हियूं करण वक़्तु विञाइण बराबर आहे। अॼु ॿीहर वॾा हमला करे सघूं था। ईरानी कूड़ा आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं उन्हनि आबनाए हुर्मुस में हमला कया। खां सवाइ बि तेहरान जे एटमी हथियार हासिल करण वारी सघ ख़तम करे सघूं। मौजूद अमरीका ईरान जा अकवेत मिज़ाइल अमरीकी सबास ते हमले जी विडियो
2: दवा वठण थी वञासीं हुयो त विया हुया हितां सियाल खणी विया आहिनि आयो अथनि। मां मुंहिंजे पुट खे बि ज़ख़्मी कनि। मां वञा पई इलाज।
3: हक सच जो आवाज़, संगीत जो आवाज़, FM 90 ॿुधंदा रहो।